दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: आसमान।
1: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: back after this short commercial break.
1: E-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.
3: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेर तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
5: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
6: Entertainment, ho ya updates, yeh hai tumhari har mood ka dost.

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक।
1: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

0: right. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. And of course, assalamu alaikum. Ahle Pakistan, Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. Mujhe kehte hain, ji, Sahil Khan, kaise hain aap? Tamam log yakeenan theek thaak hain, fit hain. Mazze mein hain, khoob enjoy kare apni zindagi ko. It's 8:25 on the dial, ladies and gentlemen. Main hoon Sahil, aur mere saath maujood, one and only.
1: के होने वाली है. देखिए मेरी जिंदगी तो वैसे चल रही है, कल साहिल को छोड़ के गई थी, आज साहिल को आगे पकड़ लिया
0: वही से. लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन एक नया दिन है और डेफिनेटली आज के बहुत सारे टास्क और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में है, क्योंकि वीकेंड पे सब पेंडिंग काम जमा हो जाते हैं और सब कुछ सब करने पड़ते हैं. अगर आप ना करें तो फिर डेफिनेटली वो फिर आगे जमा होते जाते हैं और वीकडेज में आपको फिर तंग किया करते हैं.
1: साहिल, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता, इट्स बीन इयर्स, ये मेरे घर में भी शायद होता है, शायद हम बहुत छोटे होते होंगे तो अम्मी जब काम करती थी. अब ये सीधा लगा हुआ, अब आपको आवाज ही ना आ रही तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज.
0: मैंने अब एडजस्टमेंट,
1: मैं कंप्लेन कर दूंगी ऊपर तक.
0: जी जी
1: तो हमारे घर में क्या होता है कि वो वीकेंड वाला जिस तरह भी, और हमने हर दूसरे घर में यही होता है कि यहाँ देखे किसी के छत पे कपड़े हैंग हुए हैं, धुले हुए, ठीक है, कहीं पर सफाइयाँ हो रही है, ग्रैंड सफाइयाँ लोग कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड होता है, उसके बाद फिर आप पूरा हफ्ता मसरूफ हो जाते हैं. मैंने अपने घर में ना ये बड़ा कम देखा है कि भाई ये वीकेंड है तो ये होगा. मतलब जब तक हम स्कूल कॉलेज में थे तब तक देखते रहे हैं ये होता रहा है, उसके बाद से नहीं. बिकॉज वालदा घर पे और मैं और मेरी सिस्टर, मेरा काम जिस तरह का है उसमें जो है वो ये माइक आपका गिर रहा है. जिस तरह का मेरा काम है, जैसे मैं अगर देखा जाए बाकायदा तौर पे, अगर मेरा कोई शूट नहीं होता, जुम्मा हफ्ता और इतवार मेरा FM 101 तो होता ही है और 3 दिन होता है साथ साथ जाके.
0: मैंने कहा वो नहीं रुक रहा, मैं ही चला जाऊँ. अच्छा जी,
1: सो आई थिंक ये भी एक ब्यूटी होती है कि आपने अपने आप को ना मसरूफ कैसे रखना है.
0: बिल्कुल ऐसे
1: जरूरी नहीं कि आपने वीकेंड भी करना कोशिश किया, अगर वीकेंड पे ना आप थोड़ी सी लेजी हो जाए.
0: अच्छा पता है, अब नॉर्मली मैं आपको बताऊं,
1: मैं गलत मशवरा दे रही हूं, लेकिन मैं
0: नहीं ये बात ना आपकी बहुत अच्छी है. मैं आपको बताऊं, आप अगर वीकडेज में किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों के साथ साथ, तो वीकेंड आपके पास जो है ना वो एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि आप अलग से अपने लिए मी टाइम के लिए स्पेंड कर सकते हैं,
1: टू सेलिब्रेटेड विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस.
0: वो बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि यू हैव अ किड्स, योर वाइफ, हस्बैंड, मदर, सिबलिंग्स, आप किसी के साथ आप एंजॉय करते हैं और ये करके देखें. क्योंकि कल भी साहिल हम जो बात कर रहे थे, वक्त अपने लिए चीजों को निकालना ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चले साहिल, आपसे एक सवाल है. मैं आपको दे रही हूँ 1 करोड़, ठीक है?
0: मैं वापस नहीं दूंगा, मैं पहले बता,
1: मैं आपको आज 1 करोड़ दे रही हूँ, ठीक है? सो आप वो 1 करोड़ लेंगे, और मतलब मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि आप आज 1 करोड़ ले लें,
0: ठीक है?
1: ठीक है, और फिर मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ कि साहिल मतलब या तो आपकी लाइफ, या एक तरफ आपकी जिंदगी है और एक तरफ 1 करोड़ है, तो फिर आप क्या चुनेंगे?
0: मैं अपनी जिंदगी चुनूंगा, ऑब्वियसली.
1: यस, सो ट्रू, एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट इज, सो इट मींस कि जो पैसा है, चीजें हैं, वो मैटर नहीं करती,
0: नहीं करती.
1: व्हाट मैटर्स टू यू इज योर लाइफ.
0: लाइफ,
1: सो आज इस लम्हे आपने आज 1 करोड़ को नहीं चुना, आज आपने अपनी जिंदगी को चुना.
0: और उस जिंदगी को चुना, इसका मतलब ये कि आपने अपनी सेहत को चुना, अपने काम को चुना, अपनी एक्टिविटीज को चुना, अपनी खुशी को चुना, अपने प्यारों को चुना. ये एक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: मैं मतलब मैं सोचती हूँ काश कि मुझे बहुत साल पहले समझ में आ जाता, हाल में जीने की जो खुशी है ना वो आपको करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है.
0: एग्जैक्टली, वही गाना था बड़ा जबरदस्त, फिकर ना फाका ऐश कर काका.
1: बिल्कुल,
0: उसमें एग्जैक्टली यही बात है कि भाई आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं, जो जिसके जिम्मेदार आप नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है. कुछ बुरा भी होने वाला, आप उसको सीधा करने के लिए अल्लाह से ही दुआ मांग सकते
2: हैं. One above FM 101.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: And now you're tuned into
0: FM 101। इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: I love FM 101.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: তুই এখন মনে মন কিনে কি
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।

पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह ने 27 नवंबर 1947 को पहली कुल पाकिस्तान तालीमी कॉन्फ्रेंस कराची को अपने पैगाम में फरमाया, कौमी खिदमत और एहसास जिम्मेदारी की नशोनुमा, ये हमारा फर्ज है कि हम आने वाली नस्लों को पूरे तौर पर इस काबिल बना दें कि वो इक्तसादी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस तरह हिस्सा लें जो पाकिस्तान के लिए बायस इज्जत हो।

0: Dijis es verdad.
1: जदयू टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: You're listening to FM 101, अबले बले ओशा ओशा।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अस्सलाम वालेकुम।

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कदीम मकामी बाशिंदगान के हुकूक, सकाफत और रवायात के तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने हुकूमती ढांचा जाती असलाहत के फरोग और निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच गया।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: क्रूजिंग ऑन योर एफएम डायल, दिस इज 101 एफएम।

0: FM 101, आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरारुल हक और आप लोग सुन रहे हैं मेरा

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने मकामी लोगों के हुकूक, सकाफत और रवायात के तहफ्फुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल तेज करने और हुकूमती ढांचा जाती इस्लाहात के एजेंडे की रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद हम सब एक हैं के उनवान से खुसूसी नगमा जारी किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज और तहकीकाती इदारों ने आज सोपोर और जिला बारामोला के मुलहिका इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान।

इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: मैं भी हूँ जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सबकी पहचान बना।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल।

0: हसन जहां भी, और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम गुलाम अली भाई, क्या हाल है?
0: बिस्मिल्लाह अमानत भाई, बिस्मिल्लाह।
1: अमानत भाई बेहतर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। देखो सारे दोस्त आए, नमीद भाई भी आ गए। नमीद भाई ने कहा मैं तो पैदल शेखुपुरे पहुंचने वाला हूं, मैं तो नाम सुन के दौड़ पिया सी।
0: तो मैं तो ला लेना साइकिल ते, मैं तो नाल ला लेना।
1: अच्छा चलो सही है,
0: मैं ला ले। तुझे सड़क देना खब्बे पासे टुटदे रहना ते मैं आया।
1: चलो ठीक है, ते रजा चौधरी इंशाल्लाह आन गए, सारे लतीफ मुगल साहब आए ने, सारे सरबरा ने, सारे बाप दादा शफकत ने। ते मैं कह ले ना लड़ाइयां, छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं होनी चाहिदियां,
0: ये नहीं होनी चाहिए,
1: नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हो ना छोटी छोटी अग लगी हुई ना, थोड़ी थोड़ी धुआं हो पर पूरे शहर नु अग ला देंगी, ऐ हुंदा है। अगर दुनिया भी थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत थोड़ी बहुत हो जाए, वो साड़ी भी होंगी रही थोड़ी बहुत, दो मिनट बाद थोड़ा जो बोल पे फिर उसे देख वो मोहब्बत का इजहार होंगे,
0: सही
1: वो कोई गल नहीं। हाँ जी, ते बाकी इंशाल्लाह जिन्हें भी आगे दोस्त साहब अफजल वसीम मेरा नाम ही है, फेसबुक नाम है।
0: मार्का निकल चुका है ते वो अपने सफर ही रवान दवान है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसे हैं आप?
0: मैं अल्लाह दा करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। कौन बोलते पे ने?
2: मजाक लड़ाइया होंगे ना, प्यार वधदा है। मेरा तो यह मानना है पर जी सारे अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, उन्होंने तजुर्बा है।
0: ओके हो गया, ओके हो गया,
2: ओके। सारे सुनने वाले नु सलाम, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर जी, हाल है? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: सर जी दो हथा सलूट है तुम बोधी जट का। सर
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3: हाँ सर, साढ़े अमानत भाई आए, साढ़ा अभी साहब आए ने, सलीम दर्जी साहब
0: जी, जी
3: लतीफ मुगल साहब, साढ़े क्यूट जेड़ा एडमन साहब ने, इन्हों के नावे को गाना लाना ये जेड़ा मैं तुहानू कहा सी सर।
0: ओके ओके ओके, तो टॉपिक ते की कहंदे?
3: सारा निकिया निकिया लड़ाइया नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
0: ओके ओके, बहुत शुक्रिया।
3: देखो ना मेरी बेगम जेड़ी है निकी निकी गल तू लड़दी है, ते हुण आपे ही जेड़ा ना अंडे बनाए सू नाल गंडे कट के।
0: सर जी पता की है, बेगम नु चाहिए है निकी निकी लड़ाई ना करे, जरा डोई दे नाल तुहाडी तबीयत साफ करे।
3: अच्छा जी, खैर हो सर, थोड़ी पूरी टीम सर सलूट है साडा, ते थानू दो हथां नाल
0: सलूट है। पाकिस्तान
3: जिंदाबाद, जिंदाबाद ही रहे,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान
3: जिंदाबाद। अज साडा गीत लाजमी सर लाना जो पुत्र जग्गे दी फिल्म दा, तैनू किंज समझावां।
0: ओके मैं लभदा लभदा लभदा।
3: खैर होगी सर, पाकिस्तान
0: जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेनू किंज समझावा। मुश्ताक अहमद गुलशन फ्राम न्याजी अड्डा लाहौर, अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने वीर गुलाम अली जावेद साहब, क्या हाल हैं? शो आपका सुपर से भी ऊपर होता है, हमारी खुश नसीबी है कि इस बार हम दो जश्न मनाएंगे, एक जश्न आज़ादी और दूसरा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबको दोनों को दोनों जश्न मुबारक हूँ। बड़ा सोहना मैसेज मुश्ताक भाई, लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद आयो, खैर तो है कि दे गया है कि मसला की हा, ये जरूर मैंने दसिया है तो मेरे नाल रव्या है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, तेरी आस ते चुका है कदम पहला, तेरे नानू शर्मा सारिया ने तेरी मुश्किल कुशाई ते नाज मैनू बिन परा तू उड़ारियां मारियां।
0: वाह,
4: रब सच्चे दा नाम लेके सैदपुर स्टा मुल्तान रोड लाहौर तो आ गया उस्ताद जी, अपने विचार सांझे करन लई प्रोग्राम रावी किनारे दे विच ते। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अली जवेद भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम ते बिस्मिल्लाह। की कहंदे हो टॉपिक जी? जी
4: मैं की करा जी, प्रोग्राम दी तारीफ ते माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ।
0: ਇਹ ਜਿਹੜੀ
4: ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਭਾਈ
0: ਜੀ, ਜੀ
4: ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ,
0: ਹਾਂ ਹਾਂ
4: ਇਹ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਅੱਛਾ,
4: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਟ ਖੜਕੜ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਣ ਪਕੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ।
0: ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮਦਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ,
0: ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਜੀ,
4: ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਸੀਮ ਆਰਜੇ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਪਏ ਭਾਜੀ।
0: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਖਰੀਅਤ ਹੈ?
4: ਸਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਸਲਾਮ।
0: ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ।
4: ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਾਓਗੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने सिंगापुर के सदर, हुकूमत और आवाम को उनके 61वें कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। वजीर पेट्रोलियम ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दिया है। वजीर दाखला ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन का अमल आसान हो गया है। पंजाब की वजीर आला ने कहा है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सूबे भर में मुतवाजन तरक्की का रुझान मुतारिफ कराया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में पोलिंग कल होगी। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज और तहकीकती इदारों ने आज सोपोर और जिला बारामूला के मुलिका इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंगापुर के 61वें कौमी दिन के मौके पर सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगरत्नम, हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में कहा है कि पाकिस्तान सिंगापुर की तामीर मिल्लत और माशी तब्दीली के शानदार सफर को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने सिंगापुर की कामयाबी को जिद्दत और तरक्की की मुतासिर कुन मिसाल करार दिया। सदर मुमलिकत ने रवां साल को पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह के तौर पर ख़ास अहमियत का हामिल करार दिया। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि डिजिटल मईशत, माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी, समंदरी और लॉजिस्टिक रवाबित, शहरी मनसूबाबंदी, पेशा वराना तरबियत, तालीम और सकाफती तबादलों और सियाहत के शुबों में मजीद तआवुन के वसी इम्कान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक और उनके अवाम के मफाद की खातिर बाहमी दिलचस्पी के शुबों में तआवुन मजबूत बनाने के लिए सिंगापुर के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है।
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और आपको हर जगह पर पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, तुर्किया के झंडे नजर आएंगे। जो मक्का दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और हमारी क्यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, पीर मुर्शिद सैयद आसिम मुनीर साहब, जो किरदार इन्होंने अदा किया, और ये एक तारीख साज़ मुआहिदा है, और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। शराकत दारी के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि एक संगे मील है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब वो अब अपने दिफा के हवाले से एक मुआहदे के तहत आगे बढ़ेंगे, और इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज बख्शा कि पाकिस्तान मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन बना, और उसके बाद ये तीन दोस्त और ब्रादर मुल्कों का दिफाई मुआहदा होना, ये अल्लाह ताला का खास इनाम और अल्लाह ताला की खास नेमत है पाकिस्तान के लिए। हम इसको भरपूर तरीके से अपने अंदाज में हर जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तीनों मुल्कों के झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं, और लोगों में खुशी की लहर है अल्लाह ताला के फजल से। तो ये मक्का दिफाई मुआहिदा अमन सलामती के लिए है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस काम के लिए चुना है।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: इन हवाओं पे मैं जान लुटाऊं।
0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: Smile and dial 111 FM. There's music, and then there's magic. One above FM 101.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी या चौगुनी तरक्की का फरमाए। आमीन। तो मानो साया।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक। वन अबव FM 101।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

तेरा ही हूँ मैं, जाने दे अब मुझ पे जो गुजर रही, तुम्हें तो कोई खबर नहीं। तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं। चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: स्मृति के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की पर किसी भी बैरूनी मुसल्ला हमले को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रद्दुल फितना सोम के दौरान बलूचिस्तान में 15 खवारिज हलाक कर दिए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के नस्बुलैन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल हिमायत को सराहा है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुल्क में खवातीन हॉकी के फरोग के लिए नेशनल वेमेंस हलाक कर दिए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के नस्बुलैन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल हिमायत को सराहा है। और पाकिस्तान

0: लाड़काना, मिठी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान Tune in to the one above FM 101
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: सुनते रहिए FM 101 101

इनको हुआ क्या कि इन्होंने मेरा दिल लेके मेरे हाथ से खोया। बस इसी ध्यान में हम थे कि हुई पाँव की आह, नजर उठी तो ये देखा कि चला आता है जहरा जबी माह मुबी तुरफा हसी पर्दा नशी तुर्रसमी लुबते जी दिल का मकी दुश्मनी थी साथ मगर कोई नहीं। धक से हुआ दिल के ये इस वक्त कहा, उससे जो पूछा के बता खैर तो है क्यों इधर आया, तो जवाब उसने दिया हंस के यूं ही

गए सटा काजा। अरे तो बा, अरे तो बा, चलो बैठे रहो, बातें न बनाओ। तुम यो ही मुझसे ये कहते थे तुम्हें हमसे मोहब्बत है। हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े,

0: नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: On the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

Alright, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. I'm Kamal Isban, Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, and Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain shining frequency FM 101 ki aur FM 101 ke Islamabad studio se main hoon live aap logon ke saath. प्रोग्राम शम गप में ठीक रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में. 9 अगस्त साल 2026 और इतवार की यह खूबसूरत शब आप लोगों के साथ बिताने के लिए मौजूद है FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से. उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़-अमान में होंगे. एक नया दिन, एक नई तारीख, एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ साथ मौजूद है. वज़ीर-ए-आज़म से लेके कश्मीर अनबियान इस्लामाबाद स्टेशन टेरिटरी और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहां जहां तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, सबको वेलकम.

की तरह पहला सॉन्ग, पहला गाना प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम। जहां तक हो सके पाकिस्तान की तरक्की में अपना मजबूत किरदार अदा कीजिए। बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी।

0: पाकिस्तान हमारी जान, सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। जो जा रहे खुश रहे और
1: हमारी सबसे पहले
0: बहुत खुश रहे। The Pride of Pakistan, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

जो फेसबुक का अभी स्टेटस जो है वो मौजूद नहीं है, और जैसे ही स्टेटस जो है अपडेट होता है आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0511110101920240 और 4471 पे आप लोगों के टेक्स्ट

0: दोस्तों के दरमियान देखिए एक बहुत अच्छी लेजेंडरी वॉइस और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए भी बहुत ही खास एक सिंगर है,
1: मेरी जिंदगी है।
0: तो मैंने कहा सर उनको भी शामिल कर लेते हैं ट्रिब्यूट जो है वो
1: गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू।
0: एक बड़ी कॉमन सी बात है दोनों में कि दोनों का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है।

और साथ साथ आपको टॉपिक जो है वो बता ही देते हैं कि टॉपिक क्या है जिस हवाले से आज हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ। हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है जिंदगी में, अगर ये हो जाए अगर वो हो जाए, और जो आजकल हो रहा है बस वही हो जाए। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे आप? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है, गालिब अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे आप? अपने जवाब के साथ हमें देख भेजेंगे 44711 पर। अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम और उस मैसेज को आप सेंड करेंगे 44711 पर। आप लोगों के लाइव कॉल्स को मैं शामिल करूंगा 10:30 की ब्रेक के बाद, लेकिन फेसबुक का स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सो

और इस दोस्ती से मुझे याद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने बारहा उनका जिक्र करता हूँ। अमजद इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, तो उनकी सेहतयाबी के लिए जो है आपने दुआ करनी है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त इस वक्त बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में, और एक डिजीज है उसके साथ वो लड़ रहा है। सो मेरी भी बहुत सारी दुआएं अपने दोस्त के लिए, और जब भी आप दुआ में हाथ उठाएं तो मेरा दोस्त अमजद इकबाल उसका नाम जरूर अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा। अल्लाह ताला उसको सेहत दे।

अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अलग अलग का बहुत करम है। और आई होप यू आर फाइन, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और सब मौजूद है सहराए आलमगीर से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सनासर को आपने सलाम भेजा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शिकारी मंजूर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। और ये वीक इतना लंबा क्यों हो जाता है ये मुझे पूछना पड़ेगा वीक से कि वीक इतना वीक क्यों है।

10 बजकर 20 मिनट हुआ, साथ हैं 101 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अपनी घड़ी आप ठीक कर लें, क्योंकि जो चीज़ वक्त पे ना मिले उसके मिलने का बाद में कोई फायदा

गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे आप, क्या मांगेंगे? एक बहुत ही लेजेंडरी वॉइस और इनका बहुत अच्छा सॉन्ग, उसको रीमेक किया है कि नहीं, अब तो एआई का दौर है।

थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अमर भाई, आप मुझे सुन रहे हैं। और अमजद से रिलेटेड मैंने शो के आगाज में ही सब जितने हमारे लिसनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरा जिगरी यार इस वक्त जो है वो एक डिज़ीज़ के साथ जो है वो लड़ रहा है, तो उनकी सेहतयाबी के लिए बहुत सारी आपने दुआएँ करनी है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और फिर हम बहुत बहुत सारी गप्पें लगाएँ, और काफ़ी टाइम हो गया जब से हम इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, वो इधर से उधर शिफ्ट हो गए, तो मिलने जुलने वाला सिलसिला भी जो है काफ़ी टाइम से अधूरा है। और क्या वक्त था जब हम डेली शाम को ना मिला करते थे, लेकिन अब वो मिलना जुलना काफ़ी हद तक कम है। लेकिन ये फासले जो हैं वो सिर्फ सड़कों से रिलेटेड हैं, दिल वाला फासला जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता।

10 बज के सुबह से आते हैं 25 मिनट आपका मेरा सांस रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक लोगों को हम बताए चलते हैं कि लोग हमें मैसेज कर सकते हैं डबल 4 7 1 भी आप लोगों ने मैसेज सेंड करनी है अगर अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे आप 0551111001 and 9202540051 एरिया कोड के साथ आप डायल कर सकते हैं आई थिंक स्टेटस भी अपडेट हो चुका है

हाँ, इतना बैंक बैलेंस जरूर है कि इस वक्त कोई 2700 रुपया पड़ा हो इसमें। अरे लोग अज्यूम करते होंगे ना हमारे बारे में।

0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बहुत बहुत मेहरबानी। अब इस हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, आपने जो मुझे एक लिख भेजा है, हाय हाय हाय, ऐसे भी इसी सियापे दे। Such a beautiful voice. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। आपके कान बहुत अच्छे हैं।
1: सोचा था प्यार जिंदगी भर में तुम्हें करूंगा।
0: जी स्टेटस भी आप जो है अपडेट हो चुके हैं, वहां पे भी अपने कमेंट्स में जवाबात लिख भेज सकते हैं। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे, हमने जो मांगा था वो हमें

टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 10:30 हुआ से आते हैं और सामने आप लोगों के लाइव कॉल्स को मैं शामिल करूंगा आप लोगों की कॉल्स 0551 000 1 9020 542 0 इश्क ते साड़े ककते कंडे इश्क साड़े ककते कंडे इश्क ते आतिश दोहे बराबर हाँ आपसे है इश्क ते आतिश दोहे बराबर एक साड़े ककते कंडे एक साड़े तन मेरा

0: किसी कॉल्स आप लोगों की शामिल करते हैं और देखते हैं कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। टॉपिक हमने आप लोगों से शेयर कर दिया। टॉपिक है कि अगर एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो तो क्या मांगेंगे। सिर्फ हम टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, नहीं तो आज मैंने कुछ तेरे बात में चुनया दो धारी तलवार जो रखी हुई है। So, देखते हैं जी कौन है, कहां से है हमारे साथ, क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन कहां से?
1: मैं मोहम्मद तलहा बात कर रहा हूं, गुजर खान से।
0: कैसे आप, ठीक हैं?
1: जी अल्लाह पाक का शुक्र है, फजल है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे आप?
1: यूँ तो हर इंसान की बेशुमार ख्वाहिशें होती
0: एक
1: हैं।
0: एक ख्वाहिश लंबी
1: है, मैं ये भी समेट लूँ, ये भी
0: एक एक एक ख्वाहिश सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड दसो केड़ी है।
1: बड़ी मुश्किल गल कह दी है तुसी, पर
0: ओ केड़ा अलजबरा दा सवाल ना पूछ लिया तुम्हारे को, सीधा सीधा पूछिए पैसा है, पैसा
1: पैसा तो नहीं अलबत्त मोहब्बत जड़ी
0: है। ठीक हो गया सही हो गया, ठीक हो गया
1: जी।
0: मोहब्बत
1: ठीक हो गया।
0: मेरा नाम है मोहब्बत, मैं ये मोहब्बत ढूंढ रहा है, मोहब्बत। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन?
2: मैं अलिश्ता बात कर रही हूँ राजकृष्ण से।
0: कैसी हैं आप, ठीक हैं?
2: ठीक, आप बताएं कैसे?
0: शुक्र अल्लाह का। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगी आप?
2: मैं अपने भाई के लिए दे
0: दूं खुशियाँ। कौन से भाई के लिए?
2: आप भी भाई हैं और एक मेरे भाई हैं, बड़े मेरे से बड़े मेरे भाई हैं।
0: अच्छा ठीक हो गया, सही है।
2: और यूसुफ भाई, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, मैं 5 साल से आपका शो सुन रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है।
0: थैंक यू सो मच, मतलब लगता है आज मेरा आखिरी शो फिर है।
2: नहीं
0: आखिर
2: नहीं होगा,
0: इंशाल्लाह
2: रोज
0: कॉल
2: किया करेंगे आपके शो।
0: मैं तो रोज शो करता ही नहीं हूँ।
2: नहीं, हर संडे को।
0: ओके, हर संडे को, ठीक हो गया, सही है।
2: और सुनने वाले को सलाम, और मेरी खाला सुन रही है उनको भी सलाम।
0: वालेकुम सलाम, खाला की तरफ से भी जी, वो अगर सुन रही है तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: आवाज आ रही है?
0: जी जी आ रही है जी। कौन कहाँ से?
2: मैं
0: बात कर रही हूँ।
2: कौन बोल रही है?
0: निगहत बात कर रही है, इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप, ठीक हैं?
2: मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ आपके शो में।
0: अच्छा
2: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगी आप?
2: मेरी तो ये ख्वाहिश है मैं आपसे बन जाऊँ,
0: आरजे बन जाऊं। हमें नहीं देख के दिल रज गया आपका,
2: तो आपको देख के शौक में
0: आ गया। अच्छा चले सही है, ठीक है।
2: बताएं मुझे,
0: सॉरी
2: मैं कह रही कुछ टिप्स बताएं मुझे आरजे बनने के लिए।
0: कुछ टिप्स बताएं आरजे बनने के लिए, घर वालों की दुआएं हैं आपके साथ?
2: घर वाले बस कुछ है, कुछ नहीं।
0: नहीं, उनकी दुआएं हैं, मैंने कहा।
2: जी जी,
0: फिर नहीं बन सकती
2: इंशाल्लाह।
0: फिर नहीं बन सकती आप?
2: नहीं मतलब है।
0: अच्छा आप सुने, आप मतलब, मैं मतलब आपको
2: क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
0: क्वालिटी तो कुछ नहीं होती है, आपकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस पे आपको भूर हो, उसके अलावा आपका जो बोलने का अंदाज है वो एक पता चले कोई आरजे जो है, मुझे भी बहुत टाइम बाद जो है वो पता चला था। एक तो आपके आप रेडियो सुने, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके थैंक यू।
2: मेरी आवाज ठीक है?
0: आपकी आवाज ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल में आई थिंक आप अगर हेडफोन लगा के कॉल करें तो वो डिस्टॉर्शन सी आ रही है। हाँ हैंड फ्री लगे, देखिए इतने तो हम तेज हैं, इसलिए तो आरजे यहाँ पे बैठते हैं, उनको पता होता है। देखिए एक तो सबसे पहले आपको नॉलेज जो है वो होना चाहिए, आपको बात करने का आपका अंदाज जो है वो ऐसा होना चाहिए, फिर आपको जो कुछ लोग ऐसे आते हैं उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, न्यूज़ अपडेट्स और اپنے آس پاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ہنسے کیوں ہیں آپ؟ لفظات رہتے بادوں وہ نہیں, چیزیں نہیں کہہ رہا ہوں. آگ جو ایسی تو بچائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش, عشق آتش سیریسلی کچھ بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے, کم از کم آپ کو صرف اگر بولنے کا کیا کہیں گے, اس آرٹ آتا ہے سب کچھ بھی کر سکتے ہیں. 0511100192024540. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: شکر اللہ کا. آپ وہ اندرون والے ہیں
3: جی؟ ہم لاہور سے بول رہے ہیں, شاد باد.
0: شاد باد زندہ آباد. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
3: آپ کی دعائیں. نام تو میرا محمد شہزاد ہے. جیسے مجھے کو آخری خواہش کرنی ہے
0: رہ گئی ہے, اگر ایک خواہش پوری ہو تو کیا مانگیں گے؟
3: تو میں تو مانگوں گا جی, میں سلطان ہی بننا چاہوں گا جی. بن گیا
0: تو پہلے والا غلط سی گا؟
3: نہیں, پہلے میں نوری ناتھ تھا, میں کہ سلطان ہی بن جاؤں.
0: اچھا اچھا اچھا, کیا بات
3: ہے. کریسی رہا ہوں نا پہلے.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا, صحیح ہوگا.
3: کبھی سلطان ہی کو دیکھا آپ نے؟
0: جی جی دیکھا. کیوں میں کی تیرا میں نے نظر نہیں آتا.
3: نہیں
0: جی دیکھے, میں سنیا بھی ہے.
3: پتا لگے گا نا
0: جی. جی جی سنیا, میں پہلے بھی سنیا.
3: اچھا جی,
0: آہو
3: میری یہی خواہش ہے جی, مولا نو مولا مارے تے مولا نہیں مارتا.
0: مولا نہیں مارتا تے مولا مار ہی نہیں سکتا. ہاں
3: جی
0: چلو ٹھیک ہے, ودیا ہو گیا جی. تھوڑا گپ لا کے بڑا
3: اچھا پروگرام جی.
0: تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اور سن دو پے ہو اس نل میں, میرے کو پتہ ہے پیاری نل نہ صحیح.

0: ओके जी एमसी, अब ये पता नहीं आपका नाम के कोई शॉर्ट्स क्या है वो है या के क्या है, अगर आप अपना नाम पूरा देखेंगे तब मुझे आइडिया हो जाएगा कि एक दुआ मांगूंगा। अच्छा चलें ठीक है जी, दुआ मांगेंगे तो इंतजाम किया जाए। 0511100101 कुछ मजीद कॉल्स जो है वो शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
1: ये अमीर बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: अल्लाह
0: शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो तो क्या मांगेंगे? या अल्लाह खैर, आवाज गायब होगी, कौन सी ख्वाहिश मांगने लगे आप?
1: अलादीन का चिराग मिल जाए, यही ख्वाहिश है।
0: क्या मिल
1: जाए?
0: अलादीन का चिराग मिल जाए। वो अगर वो मिल जाए उसके अंदर से रगड़ने से कुछ ना मिले तो चिराग को क्या करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट ख्वाहिश आपसे पूछी है।
1: चिराग को कचरे में दे देंगे।
0: मतलब लेना तो उसी चिराग ही है।
1: और आप सुनाए कैसे?
0: शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह।
1: और क्या
0: कब शो करते हैं आजकल? पता है सबको यार, क्यों ऐसे ड्रामे लगाते हैं, कब कब शो करते हैं, कल रात को शो करके गए हैं।
1: टाइम हो गया, मैंने उनका शो नहीं सुना। अभी दिन के बाद
0: जुमेरात और जुमे को वो करते हैं हाउस एट 10 से 12, और सैटरडे नाइट जो है वो करते हैं इंटरनेशनल रात 12 से लेके 2 बजे तक। कल रात को उन्होंने इंटरनेशनल किया है, कल रात जो गुजर चुकी है। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम एंड सलूट टू यू मिस्टर टूट। बहुत खूब इंडस्ट्री

और वो औरतें औरतों से तमस्कर करें, कहें कि वो उनसे अच्छी हो और अपने भाई को आप

0: में क्या है?
1: लाली है।
0: बगिया में कौन है?
1: माली है।
0: अरे माली के संग कौन है?